बन्दीपुर केबल कार को बटन स्टेशन केबल कार चोक तनहू में खुले ड्राइव इन रेस्टुरेंट गए खोजे रोजे थरी थरी का स्वास्थ्यवर्धक खाना का परिकार रिफ्रेशमेंट को लागी मनमोहक बगैचा धार्मिक पार्क र जंगली म्यूजियम हेर्ने मौका पाउनुहोस्। साथ ही शिव भगवान को विशाल मूर्ति को दर्शन पनि गर्नुहोस्।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 8 बजे को छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेक द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: Extreme energy drink.
1: वैनयों नाती केटो पनी कोस्तो होने हमरो पाला गीत बोझना लातो जेडियो बोटारे बोटारे गौर सबा
2: लव सुनने बढ़िया भाई।

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक एक बजे को छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 4 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 5 बजेको छ.
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक, टेक द डिफरेंस, फील द एनर्जी.
3: तपाईं रेडियो मर्सेन्जी एफएम 5

गंतव्य पुरानो तर उचाई नया बन्दीपुर केबल कार यही जेठ 31 गते बाट व्यावसायिक संचालनमा छ। बन्दीपुर केबल कार, प्रकृति संग रमौ खुलेर।

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 10 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी